Avicii. It's hot.

कभी कभी मुझे लगता है कि आपके प्यार में मैं मर भी सकती हूँ लेजिटिमेटली, एंड देन देयर विल बी नो वन टू डू दिस नाइट शो फॉर यू. मुझे मेरे डीएम में स्लाइड किया है रवि अंडरस्कोर लवर बॉय अंडरस्कोर योर्स फॉरएवर ने एक मैसेज. रोसी ROSSI, मेरे नाम की स्पेलिंग्स आपने अभी भी नहीं सीखे. रोसी, यू आर माय लव माय एंगल, डोंट ट्रीट मी लाइक पोटैटो, आंसर माय डीएम. सबसे पहले तो मेरा नाम रोसी नहीं है, रोशी है. दूसरा, आई एम नॉट योर एंगल, आई डोंट इवन वॉन्ट टू बी योर एंजल. तीसरा, आई एम नॉट ट्रीटिंग यू लाइक अ पोटैटो, क्योंकि मुझे पोटैटोस पसंद हैं. अगर मैं तुम्हें सच में पोटैटो की तरह ट्रीट कर रही होती लवर बॉय अंडरस्कोर, तो अभी तक मैं तुम्हें फ्रेंच फ्राइज बनाकर खा चुकी होती. मे बी हाउएवर, अगर आप अपने DMs का इनपुट थोड़ा सा बेटर कर लें तो हम शायद एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको भी यही लगता है दैट आई एम योर एंगल एंड आई एम ट्रीटिंग यू लाइक अ पोटैटो, वाई डोंट यू सेंड मी योर नंबर, मे बी आई बी टेम्पटेड टू कॉल यू. मेरा नाम है नॉट रोसी, ROCHIE aka रोशी. फाइंड मी ऑन योर सोशल्स एंड वाइल यू डू दैट आई प्रॉमिस आई विल नॉट ट्रीट यू लाइक अ पोटैटो. एंड कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: It's hot. Mirchi. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

0: आपकी टुगेदरनेस में नॉटीनेस है लेकिन रोमांस नहीं है. Who wants that kind of togetherness anyway? But that kind of togetherness is called friends with benefits. और अगर आपके पास एक friends with benefits story है, because that is a story जो आपकी खत्म ही नहीं होती year after year after year. Please share your story with me like Vikrant did, and I'd love to talk to you about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. You can find me on Insta या FB, and right now with me on the line is Vikku baby. Hi Vikku.
1: हाय रोशी,
0: मैं आपको विक्कू बुला सकती हूँ? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उससे?
1: नहीं मैम, इट विल बी फाइन.
0: मैम मत बोलो यार ऐसे, फिर आपके बीच में ना मुझे ऐसे लगता है आपके और मेरे बीच में बहुत दूरी आ गई है.
1: नहीं वो तो कभी नहीं हो सकता. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से आपको ट्राई कर रहा था, आपने देखा भी होगा मैं मैसेज पे मैसेज किए जा रहा हूँ, बट मैं सोच रहा था कभी नंबर लगेगा मेरा.
0: देखो अब नंबर लग गया, मतलब बहुत टाइम लगता है. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं धीरे धीरे सबको फोन करती हूँ, बट अल्टीमेटली करती जरूर हूँ. और आपको तो मैंने अच्छे टाइम पे पकड़ा है यार, हम आपकी फ्रेंड्स विद बेनिफिट स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं. लाइक डूड
1: या
0: तो बड़े शेरों की तरह बोल रहे हो. आपकी स्टोरी है क्या वैसे?
1: एक्चुअली स्टोरी ऐसी थी कि वी यूज्ड टू स्टे एट माय फ्रेंड्स होम, और उसकी सिस्टर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा फेक रहा हूँ, बट शी इज मतलब मेरे से 7 या 8 साल बड़ी. तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था वो टाइम पे
0: नेचुरली.
1: एक बार ऐसा ही हुआ कि मतलब कोई नहीं था, हम दोनों ही थे. शी डायरेक्टली आस्क्ड मी अबाउट दैट
0: कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनेगा.
1: तो वो एक बार हुआ, फिर उसके बाद जैसे जैसे भी चांस मिलते गए, फिर वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स 2, 3, 4 टाइम्स बहुत बार ऐसा हुआ.
0: तो ये कितना टाइम चला या अभी भी चल रहा है?
1: नहीं नहीं वो कैसा, वो थोड़ा एक मतलब मैच्योरिटी लेवल का था. मतलब ऐसा रोना धोना नहीं, मैं तुम मुझे छोड़ जाओ तो
0: एग्जैक्टली
1: वैसा नहीं था. मतलब मैच्योरिटी था कि हाँ बस
0: मुझे ऐसे लगता है बंदे और बंदियों में से बंदियां ज्यादा मच्योर होती हैं और बंदे एक्चुअली ज्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है. एंड द फैक्ट दैट यू टुक इट सो नाइसली, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक एज वेल. थैंक यू लव, इट वॉज अमेजिंग टॉकिंग टू यू.
1: थैंक यू. एंड वन मोर थिंग
0: बोलो ना जान.
1: आई यूज्ड टू ऑलवेज सॉ योर रील्स जहाँ जहाँ भी मुझे मतलब चांस मिले. इवन I got to see you on YouTube, तो मैं तब भी आपका जो भी कितना भी मतलब 30 seconds 40 seconds वाला रोगी क्यों ना हो, मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं रुक जाता हूँ.
0: तू जान है यार, जान ले लेगा क्या मेरी, ये एक रोशी मोशी स्वीट सी किसी ले ले. It was really nice talking to you. I hope you meet the love of your life really, really soon.
1: Thanks, Roshan.
0: ठीक है, वो स्टोरी भी शेयर करेंगे फिर.
1: Yeah, definitely.
0: Okay, मेरी जान, it was so nice talking to you. और अगर ऐसे ही विक्रांत की तरह आपके पास भी एक स्टोरी है that you want to share with me, Morning Glory है, then hit me up on Insta या FB. I'll be happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, as you must have figured. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. You can find me on Instagram. You can even find me on Facebook. तो जल्दी से खड़ो जो आपको खड़ना है, but कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: It's hot.
1: मिर्ची,
0: it's hot.
2: जय कन्हैया लाल की।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Let's go crazy.

लगाओ है रेला उन चबाओ यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाओ मैं जान

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में दो नई एंट्रीज हैं इस हफ्ते। हम अपना 90s एंड 2000s का कैसेट क्लासिक भी आपके लिए प्ले करने वाले हैं। All this and more at RJ Kanika on Instagram पर आकर स्टे कनेक्टेड विद मी। कोई गाना बताना है, सजेशन है, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, बंजारी द आर्टिस्ट का गाना। गाने का नाम है बरसात। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, हितेन बादशाह का गाना फीचरिंग शर्वी यादव। गाने का नाम ही है बैंगर। दिस न्यू बादशाह ट्रैक डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लग सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: boy.
1: बादशाह की आवाज फीचरिंग शर्वी यादव, हितेन का प्रोडक्शन, गाने का नाम ही है बैंगर। दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। एक गाने को बैंगर सिर्फ वोकलिस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनाता है अपनी बीट से। इट्स टाइम टू मीट दिस बैंगर प्रोड्यूसर।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, फॉलो करें, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। पिछले 6 साल से जितने गाने बादशाह के इस शो पर डेब्यू करते हैं, जो मैं और आप सुनना बंद नहीं कर पाते हैं, उन गानों में एक नाम कॉमन होता है, वो नाम है हितेन का। हितेन इज अ सुपरस्टार प्रोड्यूसर जो बहुत रिपीटेडली बादशाह के साथ काम करने लगे हैं। बट अगर मैं उनका डिस्कोग्राफी देखना शुरू करूं तो इट्स नॉट जस्ट कि वो बादशाह के फेवरेट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने किंग के साथ, MC स्क्वायर, पैराडॉक्स, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट के साथ गाने प्रोड्यूस करें। तो फिर सोचने वाली बात ये है दैट हम प्रोड्यूसर पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं, बीट तो वही बना रहे हैं। उस पूरे गाने को पैकेज करना इस वे में दैट मैं और आप उसे सुनना बंद ना कर पाए, दैट इज द प्रोड्यूसर इन द हाउस एंड हितेन डिजर्व्स द बिगेस्ट स्पॉटलाइट। साल 2017 में दैट क्रिंज पॉप सॉन्ग बाय ढिंचैक पूजा, सेल्फी मैंने ले ली आज, वो इतना डाइजेस्टिबल वायरल गाना बना था बिकॉज हितेन ने उस गाने का मिक्स बनाया। वहां से लेके अब तक वो किसी एक लेन में स्टिक नहीं करे। बादशाह का गाना आवारा प्रोड्यूस किया एंड उसके बाद बादशाह की पूरी एल्बम एकता राजा इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय हितेन, जिसमें करण औजला के साथ गाने हैं, अरिजीत सिंह एंड बादशाह का सोलमेट। This gorgeous song is produced by Hiten. And what's so amusing about all of this is कि वो किसी भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, पंजाब को बिलोंग करते हैं। उन्होंने प्रोडक्शन अपने घर पे वीडियोज देख के हाउ टू मेक बीट्स एक्चुअली सर्च करके सीखना शुरू किया, लोगों को रीच आउट करके फेसबुक पे, प्रॉपर DIY प्रोड्यूसर। पर अपने करियर में वो अपना सबसे बड़ा पिवट पॉइंट ये वाला गाना मानते हैं। साल था 2021, बादशाह ने हितेन को एक इंस्टाग्राम रील भेजी एक वॉइस नोट के साथ कि यार कुछ बीट बनाना इस पे। दिस वायरल ऑडियो बचपन का प्यार जो हर जगह चल रहा था, हितेन ने 30 से 40 मिनट में पूरा ऑडियो बनाया, भेज दिया बादशाह को एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। द सॉन्ग ब्लू अप लाइक क्रेजी। सो इन अ वे इसीलिए हितेन कहीं ना कहीं बादशाह को अपना गाइड मानते हैं, मोर देन एन आर्टिस्ट जिनके साथ वो काम करते हैं। बट माई फेवरेट क्वालिटी अबाउट हितेन एज अ प्रोड्यूसर इज दैट ही लेट्स अ सॉन्ग बी, वो गाने को सांस लेने देते हैं एंड दैट्स व्हाई ही इज द चोजन प्रोड्यूसर फॉर बादशाह, किंग। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो गाना भी इज व्हाट इट साउंड्स लाइक बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्यूसर। गाना संजू राठौड़ का है पर उसके प्रोड्यूसर हैं जी स्पार्क, जिन्होंने गुलाबी साड़ी भी प्रोड्यूस किया था संजू के साथ। हम रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, संजू राठौड़ की आवाज में जी स्पार्क की प्रोडक्शन, गाने का नाम है बैंगल्स। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इन दी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: Number 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: अरूप खान की आवाज है, गाने का नाम है गुच्ची। ऑल्दो हमारे दिमाग में अलग वीडियो चल रही है, दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने फरक का गाना सुना तारे, 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना गुच्ची बाय अरूप खान, जिसको एक्चुअली हम सब ने इंस्टाग्राम से ही डिस्कवर किया है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज कि गाइस, ये गाना 2020 में आया था, लेकिन 2026 में ओनली बिकॉज ऑफ रवि किशन दिस सॉन्ग फाउंड इट्स मोमेंट। वो एक इवेंट पे स्टेज पर जा रहे थे और वहां जगह नहीं थी, तो एक बहुत ही क्वर्की साइड वॉक करी रवि किशन ने, वो एडिट विद गुच्ची ऑन टॉप ऑफ इट, वो हर जगह वायरल हो चुका है। एंड उस मीम की वजह से एक 6 साल पुराना गाना वापस हमारे काउंटडाउन में आ गया है। और ऐसा होता है, लाइक सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल एक गाने को, एक आर्टिस्ट को हमारे ऑर्बिट में लाके खड़ी कर देती है, एंड दैट बिकम्स अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। को सारा प्रेशर उन पे है, सारी आंखें उनकी तरफ है कि क्या ये वन हिट वंडर रह जाएंगे या ये इसके बाद कुछ करेंगे। एंड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रेशर वाला जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली डोंट थिंक वन हिट वंडर इज अ बैड थिंग टू से। अगर आप उस गाने के रिस्पेक्ट में देखो तो वो गाना इतना अच्छा है कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर पाया। बट यस, ऑब्वियसली इट रेजेस क्वेश्चंस कि इसके आगे क्या होगा। आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट इस सवालों से गुजरे हैं, एंड वन ऑफ द नेम्स व्हिच आई थिंक इज अ पोस्टर बॉय ऑफ इट इज एपी टिल्लो। साल था 2020, ब्राउन मुंडे वाज एवरीवेयर। अचानक उस गाने की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी, एंड हर किसी का यही सवाल था कि क्या ये वन हिट वंडर है या इसके बाद ये कुछ और बना पाएंगे। एंड फिर जो हुआ, दैट्स फॉर द हिस्ट्री बुक्स, राइट? आई डोंट थिंक एपी ने किसी भी सवाल का जवाब दिया, उन्होंने सिर्फ नए गाने रिलीज किए। इवन इफ ही वॉज बींग कॉल्ड वन हिट वंडर, तो उन्होंने वो उसको अपने फेवर में लिया और दिल नू समर हाई जैसे गाने बैक टू बैक रिलीज करे, एंड एवरी सॉन्ग जस्ट प्रूव दैट ही इज सो इन इट, एंड जनता ने भर भर के प्यार दिया उनके नए गानों को। सो यार, बीइंग कॉल्ड वन हिट वंडर इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स द प्रेशर देन बिगिंस कि इसके बाद क्या करना है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। एपी टिल्लो का हिट मोमेंट अलोंग विद गुरिंदर गिल, शिंदा कालो, जी माइनर, 2020 में आया ये गाना ब्राउन मुंडे, टिल डेट इज लाइक एन एंथम फॉर एवरीवन। ब्राउन मुंडे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: मैड वाइब, मैड सॉन्ग, गुरिंदर गिल, एपी टिल्लों, शिंदा कालो जी माइनर का गाना, गाने का नाम है ब्राउन मुंडे. दिस वॉज अ बिगनिंग ऑफ मेनी ग्रेट थिंग्स फॉर पंजाबी म्यूजिक, जहाँ पे फीलिंग बहुत देसी है पर प्रोडक्शन बहुत इंटरनेशनल था. आई थिंक दैट्स समथिंग आई कैन से अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन एज वेल. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. एक फोक मेलेडी को इतनी ऊबर कूल प्रोडक्शन में पैकेज किया है. पिछले हफ्ते से दो पोजिशन ऊपर जम्प करके उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: बंजारे की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। जब भी गाना चल रहा होता है मुझे लगता है ये गाना बंद ही ना हुए। सच इज द इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो नए नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत फैमिलियर साउंड करते हैं। दैट हैज टू बी अ क्लासिक। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सानी धापा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स। गाना 1996 में आया था बाय द सेल्फ टाइटल्ड डेब्यू एल्बम कॉल्ड कलोनियल कजिन्स। दिस एल्बम वाज सच अ रेजर। दिस वेंट प्लैटिनम। ये चार्ट्स पे रहा एंड कलोनियल कजिन्स इंडी पॉप स्पेस में घर घर का नाम बन गए थे। बट व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अगर आप इन दोनों आर्टिस्ट को देखें, हरिहरन जी एंड लेस्ली लुइस, ये दोनों म्यूजिक के इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम से आते हैं, दैट मेड कलोनियल कजिन्स सो इंटरेस्टिंग एंड टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट फ्रेशेस्ट एक्ट जो हमने पॉप सीन में देखा है। एक तरफ है हरिहरन जी, अ क्लासिकल सिंगर। दूसरी तरफ यू गॉट लेस्ली लुइस, हु इज ऑल अबाउट द रॉक एंड रोल। लेस्ली लुइस ने बहुत सारे वेस्टर्न प्रोडक्शन एंड साउंड से इंट्रोड्यूस करवाया एंड हरिहरन जी इज द मोस्ट ग्राउंडेड क्लासिकल वॉइस दैट वी हैड नोन। एंड इन दोनों ने मिलके जब कलोनियल कजिन से सानी धापा किया, एवरीबडी जस्ट सैट एंड आज तक भी आई एम इन ऑ। मैं जितनी बार ये गाना सुनती हूँ, इट स्टिल साउंड सो फ्रेश कि बिल्कुल अभी प्रोडक्शन हुआ है इस गाने का। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस सॉन्ग इज कि ये एक बॉक्स में नहीं बैठा है। क्लासिकल एंड रॉक के फ्यूजन की जगह है एंड सानी धापा इज अ प्रूफ ऑफ दैट। कलोनियल कजिन्स का 1996 का गाना सानी धापा इज अ कैसेट क्लासिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

कहने को ये गाना 1996 में आया था, लेकिन आज 2026 में also I can say that it is one of the most experimental pop sounds out there. Hariharan ji and Leslie Lewis sir की आवाज में that was Sani Dhapa by Colonial Cousins on our cassette classic this week. At RJ Cunning on Instagram पर आओ एंड बताओ मुझे यार 90s 2000s के यही वाले गाने which still makes us feel like इंडी पॉप का गोल्डन एरा तो 90s एंड 2000s में था. विच इज योर फेवरेट मुझे आके बताओ. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में. एक गाने का नाम है शीशा. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

Gaana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों में दो नई एंट्रीज थी। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक भी हमने आपके लिए प्ले किया। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप लेते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। बंजारे का बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी।
1: उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हुई, बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। संजू राठौड़ का बैंगल्स 13 हफ्तों से गोइंग स्ट्रॉन्ग, दिस वीक वॉज ऑन गाना नंबर 8। कहने तो नहीं चाहिए बट दिस सॉन्ग इज लाइक अ फेवरेट, फरक का तारे 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर गोइंग स्ट्रॉन्ग, दिस वीक तारे वाज ऑन गाना नंबर 7। अरूब खान का गुच्ची हैज मेड अ डेब्यू, एंट्री मारी है सीधा ऑन गाना नंबर 6। अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी दिस वीक वाज ऑन गाना नंबर 5। बंजारे का बैरन 23 हफ्तों से गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस बार वाले जो टॉप दोनों गाने हैं आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं बिकॉज काफी रीशफल हुआ है। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके हर्ष नुस्सी का गाना, गाने का नाम है साडी सुन। हर्ष नुस्सी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन, ये गाना एक पोजीशन ऊपर जंप मार के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज अ OTT रिलीज। गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक। दिस इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे, अ वेरी क्यूट लव स्टोरी बट अ इवन क्यूटर सॉन्ग। दरमिया डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। तो ये दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सुन नंबर 2 पे है, फिर दरमिया नंबर 1 पे, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
3: हाउ चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे, को तकनी च तेरे

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: बॉलीवुड को समझना है तो एक बात मान लीजिए, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस फिल्म को इंडस्ट्री सेफ समझती है, ऑडियंस उसे इग्नोर कर देती है, और जिस फिल्म को देखकर पहला रिएक्शन आता है कि भाई ये क्या बनाई है, कभी कभी वही थिएटर्स में हंगामा कर देती है। Whether it's a Dhurandhar 2, Awarapan 2, Toxic या फिर हैवान, and then of course you've got the Dhamals, the Cocktails and the Welcome to the Jungles. मतलब ऑडियंस एक अजीब सी डिमांड कर रही है, सरप्राइज भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए, बस एक चीज नहीं चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी। शायद बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग बात आज यही है। इंडस्ट्री फ्यूचर की तरफ भाग रही है, लेकिन ऑडियंस कभी कभी उसे पास्ट की तरफ खींच लाती है। जैसे आज शान की आवाज सैफ अली खान लगभग 2 दशक बाद, और हैवान से ही इस बार का काउंटडाउन होता है किकस्टार्ट। दिस इज गाना नंबर 20, मेरे हीरो है वो।
3: नंबर 20, लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
4: लिख रहे हो ना,
3: तुम भी गाओ।

जब कोई गाना खत्म होता है हम तुरंत उस टाइम पर कुछ बोलते नहीं, बस 2-3 सेकंड्स की वो खामोशी होती है। ना लिरिक्स की कोई एक लाइन दिमाग में अटकी होती है, ना म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पीस, बस आवाज अंदर कहीं रुक गई होती है। तो फिर आओ, मेरे लिए उन्हीं गानों में से एक है। और शायद म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, हर कनेक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसलिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, म्यूजिक हटाने वाला हूं, प्रोडक्शन हटाने वाला हूं, सिर्फ आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं।

बस अभी जो सुना उसमें अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी आवाज पहचान में आ जाती है। आवाज है अरमान मलिक की। एक वक्त था जब रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बॉलीवुड की सबसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल यंग आवाजों में अरमान का नाम आता था, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपनी अलग दुनिया बनाई। और शायद इसलिए नंबर 18 पर आता हुआ ये ब्रांड न्यू गाना सिर्फ एक नई एंट्री नहीं लगती, कभी कभी कमबैक अनाउंसमेंट से नहीं होता, बस आवाज दोबारा सुनाई देती है और आप खुद समझ जाते हैं। प्रेम कीटाणु से अरमान मलिक इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड कहो तो, एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 18।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17

मदहोश नाम ही ऐसा है कि वॉल्यूम बढ़ाने से पहले ही दुनिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है, और ये एक कॉम्प्लीमेंट है, और यही कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे सिंगर्स को भी दिया जा सकता है। और वैसे ही एक सिंगर है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, नाम है मोहम्मद इरफान। यार इरफान की आवाज में हमेशा से एक अजीब क्वालिटी थी, वो आवाज आपको इम्प्रेस करने नहीं आती थी, वो सीधा मूड बदल देती थी। फिर मोहब्बत याद है आपको, कितनी बातें की हैं मैंने इस गाने की इस शो पर। सॉन्ग वो संग बाय 3 सिंगर्स, अरिजीत सिंह, साइम भट्ट एंड मोहम्मद इरफान। 3 आवाजें एक गाना, अरिजीत एक दास्तान बन गए। इरफान की आवाज दास्तान बनने से पहले ही जैसे खामोश हो गई, लेकिन आवाज कहीं नहीं गई।

0: कुछ होता है यार दिल में, क्या आवाज है, और शायद दर्द यही है। कभी कभी टैलेंट का खत्म होना प्रॉब्लम नहीं होता, बस उसके पास पहुंचने वाले वो मौके खत्म हो जाते हैं। इस हफ्ते धमाल 4 का कहर संग बाय गुरु रंधावा नंबर 16 पर है। लेकिन क्योंकि हम इरफान की बातें कर रहे थे, कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो बस आप ही का एक पुराना वर्जन वापस ले आते हैं। इरफान के लिए वो वक्त था एक विलन का। मिथुन ने तुम ही हो के बाद एक नई आवाज को चुना और बंजारा में मोहम्मद इरफान वो आवाज बन गए। दिस सॉन्ग फ्रॉम एक विलन इज माई रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।
2: जिस

चिकन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर

0: कुछ फ्रेंचाइजेस को रीबूट करने की जरूरत होती है और कुछ को अपना असली चेहरा याद दिलाने की। There's a film called Race, जिसे आप नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला, लेकिन रेस शायद उस दूसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि पहली दो फिल्म्स में गाड़ियां तेज थी, लोग उससे भी ज्यादा तेज थे, लेकिन असली मजा स्पीड का नहीं था, मजा था इंफॉर्मेशन का। आपको कुछ पता है और कैरेक्टर को कुछ और ही पता है, और हर 10 मिनट में फिल्म आपको सडनली बताती थी कि जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत था। एंड देन आई सलमान खान की रेस 3। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन या कास्टिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो कहीं रास्ते में ही छूट गया, एंड दैट वाज ऑडियंस को डाउट में रखना। अब रेस 4 की बात हो रही है, रीबूट की बात हो रही है, और कास्टिंग पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। देयर कुड बी आमिर खान, देयर कुड बी टाइगर श्रॉफ, देयर कुड बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, विच ऑल्सो मीन्स कि स्केल हो सकता है, एक्शन हो सकता है, बड़े स्टार्स हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी एक ही है, क्या ये रेस होगी या रेस के नाम से एक और एक्शन फिल्म होगी? क्योंकि रेस का मैजिक तभी वापस आएगा जब फिल्म खत्म होने के बाद आप भी सोचेंगे कौन किस पर भारी पड़ा। वेल, लेट मी लीव यू विद दैट थॉट एंड ऑल्सो लीव यू विद माई स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, विच हैपेंस टू बी फ्रॉम द फिल्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बेनी दयाल और शालमली खोलगड़े की आवाज में। दिस इज लत लग गई,
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

महीनों से जिस गाने ने इस काउंटडाउन पर अपना बसेरा बनाया हुआ था, आज उसके सामने वक्त ने एक बार फिर एक नया फैसला लिखा है। कैरा हुआ इज ऑन नंबर टू, लेकिन नंबर वन की कहानी सिर्फ एक चार्ट पोजीशन की नहीं है यार। एक पुराना गाना वापस आता है और हमें लगता है कि हम गाना सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी पुरानी जिंदगी सुन रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता उन्हीं गानों में से 19 साल पहले पहली बार सुना था, लेकिन फिर हम बदले, शहर बदले, लोग बदले, जिंदगी ने अपना साउंड ट्रैक बदला, लेकिन वो धुन कहीं नहीं गई। और जब आवारापन 2 ने उसे दोबारा हमारे सामने रखा तो हमने सिर्फ एक पुराना गाना नहीं सुना, हमने देखा कि उस गाने के अंदर हमारा कौन सा वर्जन अभी भी दबा हुआ था, अभी भी जिंदा था। तेरा मेरा रिश्ता ने आवारापन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं दिया, उसने फिल्म को एक मेमोरी दी है। और आज वही मेमोरी महीनों पुराने नंबर वन सॉन्ग गहरा हुआ को उसकी जगह से उतार रहा है। इस हफ्ते का नंबर वन सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस हम उनमें खुद का एक नया हिस्सा ढूंढ लेते हैं।

0: कुछ गाने हम चूज करते हैं और कुछ गाने पता नहीं कब हमें चूज कर लेते हैं, फिर वो किसी सफर का हिस्सा बन जाते हैं, किसी याद का, किसी ऐसे वक्त का जिसे हम दोबारा जीना भी नहीं चाहते और पूरी तरह भूलना भी नहीं चाहते। शायद इसलिए हम हर हफ्ते यहां लौटते हैं। That's it for this episode of the Mirchi Top 20. Until the next time we meet, this is Suren, over and out. Mirchi
1: Top 20. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. Mirchi.

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

98.3 Mirchi, it's hot.

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, जाग जाओ मेरे प्यारे क्लॉक वॉचर, बिकॉज अब मॉर्निंग का वेकअप कॉल ऑफिशियली आ चुका है तुम्हारी लाइफ में। आई एम योर गर्ल प्रिसिला एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स, द ओनली प्लेस ऑन योर डायल वेयर कॉफी इज स्ट्रॉन्ग एंड द गॉसिप इज वेरी वेरी मिर्चीदार एंड द ट्रैफिक, well, I-95 is absolute madness, लेकिन हम यहाँ पर ज्यादा madness करने वाले हैं। Listen, whether you're currently stuck in bumper-to-bumper traffic, dodging your boss's messages or trying to convince yourself that cereal counts as balanced breakfast, सुबह की पहली मिर्ची लग चुकी है and I'm here to power your day with a lot of मिर्ची। अगले कुछ घंटों तक मैं और तुम साथ साथ में इस दिन को बनाएंगे और ज्यादा झकास और ज्यादा मिर्चीदार। फटाफट से जाकर तो मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर। मीनवाइल लेट मी प्ले सम मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू। व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट करो, 9033 मिर्ची इज माय नंबर, 9033647244। एंड डोंट यू गो एनीवेयर क्योंकि पिक्चर अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड आप सुनने वाले हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिर्ची मारकर कि आज के दिन में हुआ क्या था। बैक इन 1776 द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस सेड बाय बाय यूनाइटेड कॉलोनीज एंड हेलो टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बेसिकली द ओरिजिनल ब्रांड अपग्रेड यहीं पर हुआ था। देन 1850 में कैलिफोर्निया ऑफिशियली ज्वाइंड एज द 31st स्टेट and history was made. 1948 mein North Korea formally declared itself a nation. Then 1956 aaya, Elvis Presley danced on the Ed Sullivan show for the very first time and broke the internet. Well, much before the internet ever existed. Moving to 1971, the famous Attica prison uprising kicked off in New York. 1976 mein Chinese leader Mao Zedong passed away at the age of 82. So inme se kaun sa moment tumhara जॉ ड्रॉप करके गया है, जल्दी से स्लाइड इन टू माई DMs @ मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS, और मुझे बताओ तुम्हारा क्या जवाब है। व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड अब वेदर बेस्टी आ चुकी है बताने के लिए कि आज का वेदर का हालचाल क्या है. सो लिसन अप, वी've got zero rainfall in the last 24 hours, and guess what? Absolutely zero precipitation expected for the next 24 hours too. यानी कि आज रेन जैकेट्स, अम्ब्रेलाज, रेन कोट्स कैन स्टे इन द क्लोजेट. राइट नाउ इट्स अराउंड 65 डिग्रीज फारेनहाइट एंड मोस्टली क्लियर. लेकिन कीप योर आईज ऑन द स्काई बिकॉज बिटवीन 4 to 9 PM इट्स ब्रिंगिंग सम क्लाउडी ड्रामा. सो बिफोर सेटलिंग इन टू योर पार्टली क्लाउडी वाइब्स एट 9, आज का टेम्परेचर स्विंग करेगा फ्रॉम 63 degrees टू अ वार्म 86 degrees फारेनहाइट, दो इट विल फील लाइक 64 degrees से लेकर 85 degrees फारेनहाइट के बीच में. बेसिकली आज का हाई टेम्परेचर इज प्रीटी मच मैचिंग यस्टरडेज हीट, सो ऑब्वियसली यू सर्वाइव्ड यस्टरडे, आज का दिन भी अच्छा ही जाने वाला है. बट बिफोर यू हेड आउट, लेट मी रिमाइंड यू, लेयर के प्लेयर बनकर बाहर निकलना क्योंकि टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करने वाला है, और साथ साथ में ढेर सारा पानी पीने की जरूरत है फॉर दैट ग्लास स्किन दैट यू विश फॉर, एंड वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50++++ के साथ वाला. और अभी मिर्ची को अपने साथ बनाए रखो, मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ हूँ ही. आने वाले है कुछ मिर्चीदार बैंगर्स, तब तक तुम मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है MIRCHIPRIS, दैट्स मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. एंड अभी बॉलीवुड के हिट्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, गलती करने वाला हूँ मैं, उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

words, we are sending so much love and solidarity to the whole South Asian community over there. Number two, tensions remain escalated in the Gulf as Iran launched a major missile attack targeting U.S. military bases in Jordan, marking another high-stakes turn in international news. And lastly, the North American trade war just entered the coffee shop. A video went viral of a Canadian barista crossing out Americano and renaming it Canadiano after new tariffs kicked in. And that's it. मिर्ची आवो का थ्री पर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: doctors.
1: Good morning, guys. Welcome back to Emergency Mornings. Main hoon tumhari favorite radio bestie, Priscilla. And listen to this sci-fi madness. Chinese tech firm XPeng just launched an automated factory where humanoid robots are literally assembling other humanoid robots. On the assembly line, their flagship robot named Iron assembled itself and walked right off the factory floor without any human helping it. मतलब कि जीरो ह्यूमन स्टार्टअप हेल्प. ऑनेस्टली यार, दिस इज एवरी देसी पेरेंट्स एब्सोल्यूट ड्रीम. अ किड दैट गेट्स अप, गेट्स रेडी एंड गोज टू वर्क विदाउट बीइंग येल्ड एट 50 टाइम्स. दो XPeng इज कीपिंग द टोटल रोबोट काउंट टॉप सीक्रेट, वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, द फ्यूचर इज हियर पीपल, द फ्यूचर इज हियर. अब ये बताओ, अगर तुम्हारे पास एक पर्सनल ह्यूमनॉइड रोबोट होता, व्हाट्स द फर्स्ट देसी चोर तुम उसे असाइन करते? राउंड रोटी बनाने का या बर्तन धुलवाने का? स्लाइड इनटू माय डीएम्स ऑन इंस्टा एंड एक्स और मुझे बताओ क्या करते तुम. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. या फिर तुम मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपनी आवाज में या अपने टेक्स्ट में. 9033647244 पर अभी के भी मैसेज करो. एंड कीप इट लॉक्ड राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
2: दिस इज something special.

ऑलराइट, स्टॉप द क्लॉक. अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, ड्रॉप दैट ब्रेकफास्ट बेगल राइट नाउ. यू आर ऑफिशियली शेयरिंग योर बर्थडे विद सम सीरियसली कूल पीपल. वन ऑफ देम इज अ खिलाड़ी. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. ढेर सारा खाओ पियो ऐश करो. और अभी सितंबर 9th बॉर्न सेलिब्रिटीज के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले वी गॉट हॉलीवुड से कॉमेडी किंग एडम सैंडलर एंड देन द स्मूथ रोम कॉम स्टार ह्यू ग्रांट, जैज आइकॉन माइकल बुबले एंड मॉडर्न फैमिली लेजेंड एरिक स्टोन स्ट्रीट, ऑस्कर नॉमिनी मिशेल विलियम्स एंड आवर वेरी ओन बॉलीवुड एक्शन किंग, एनी गेसेस, अक्षय खिलाड़ी कुमार. मतलब कि टोटल स्टार पावर है आज के दिन की बर्थडे लिस्ट में और इसी स्क्वाड में तुम भी शामिल हो. वी आर ऑल्सो ऑनरिंग द बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ लेजेंड्स who passed away, soul music icon Otis Redding and the ultimate crisp chicken mastermind himself Colonel Harland Sanders of KFC. So agar aaj tumhara happy birthday hai to dher sara khao piyo aish karo, calories ko count mat karo and have the ultimate day of the year. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein mujhe shout outs bhej sakte ho apne liye, apne friends ke liye. Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Hey there, this is Priscilla with you. सुनने वाले हो तुम मिर्ची पर गोल्ड रेट अपडेट.
1: Rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,390. $4,390 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं. गोल्ड में इन्वेस्ट करना है लेकिन समझ नहीं आता किस प्राइस पे इन्वेस्ट किया जाए. आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं, समझ नहीं आ रहा कि गोल्ड के ऊपर कितनी लेबर चार्ज ऐड हो रही है. आइए राज ज्वेल्स की डॉट टीम से कनेक्ट करें. 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का प्राइस, उसके ऊपर कितनी लेबर और क्या एडिशनल चार्जेस के साथ आप ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ 9 मंथ की फाइनेंसिंग में. राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें अप्रूव होने पे आज ज्वेलरी घर जाती है और 9 किश्तों में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे मिलते हैं. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल.
0: एंड दैट्स इट फॉर योर गोल्ड रेट का लेटेस्ट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पे, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. Stay tuned and stay hot.

Hey there, this is Priscilla with you. This is the last hour of Mirchi Mornings and it's time for Mirchi Hour Got 3. सबसे पहले टॉक अबाउट अ स्काई हाई करियर क्रैश दैट गाय हु गॉट डक्ट टेप्ड टू हिज सीट ऑन एन अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट फॉर थ्रोइंग टैंट्रम्स एंड स्लर्स टर्न्स आउट ही वाज अ वीपी एट अ रियल एस्टेट फर्म एंड हिज कंपनी सॉ द वायरल वीडियो एंड हिट हिम विद अ स्विफ्ट यू आर फायर्ड नंबर टू पर शॉकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम कनाडा पंजाबी सुपरस्टार एमी वर्क नैरोली एस्केप्ड अनहर्ट आफ्टर अनआइडेंटिफाइड शूटर्स ओपन्ड फायर ऑन हिज कार फॉलोइंग अ कॉन्सर्ट इन In Abbotsford. 7 shots hit the vehicle, but thankfully Amy and his team are safe, sending a lot of strength to him. And lastly, in sports, Namandir went absolutely beast mode in the Sher-e-Punjab T20 League, smashing 173 off 64 balls. He missed Chris Gayle's world record by just 2 runs. But here's the plot twist. Because it's a regional league without official list A status, the record won't count in the official books. TM karo mujhe इंस्टा पर और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची दैट्स 9033647224 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट

मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज़ जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिढ़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रात में कपड़े प्रेस करके, बैग जमा के, सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के, पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं, वो मेरा ध्यान भी ले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखकर समझ में आता है, हाँ ये इंसान जो है ना, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। सो जो कहाँ की चीज कहाँ जोड़ के हम इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। हाँ ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते। इनफैक्ट पता है आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड, जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी। हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था। तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार। हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी। टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार। और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे। बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। On Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Dinner,

0: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार। मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती है, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती है, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एंजाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Zara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान, दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुने आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: No Entry, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो No Entry था, लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है. लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहां पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक. ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर. मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं. लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिफ से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था. एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था. अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन. और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश्ड दैट स्पॉट अवे. हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं. मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े है ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, Anil Kapoor of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जगल किया। मतलब कभी वो यहाँ होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इन फैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शंस थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो है वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया, क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो

मार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए। एंड इन फैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है.
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: त्रिदेव का ये गाना

जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह, हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना। अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या यार सारा, दोनों धुने एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुने हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बीजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर, जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: आ भी जा, ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा, और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में, और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है, और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन, अधूरी सी मेरे बिना, रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक। एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

महमूद साहब पूरी रात किशोरदा के घर के सामने बैठे रहे पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। उनके गार्ड ने ना जाकर के किशोरदा को बताया कि अरे महमूद रात भर यहीं बैठे रहे। वेल, ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म पड़ोसन। अब हुआ ये कि पड़ोसन का फेवरेट कैरेक्टर, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो विद्यापीठ ही होगा, यानी किशोरदा का प्लेट कैरेक्टर। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि किशोरदा एट दैट टाइम वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग अ फिल्म, मतलब उनको एक्टिंग करनी ही नहीं थी। लेकिन महमूद साहब जो ये फिल्म बना रहे थे उन्हें पता था कि इस जोवियल कैरेक्टर में अगर कोई फिट हो सकता है तो वो किशोरदा है। किशोरदा को वो मनाने गए लेकिन किशोरदा ने साफ मना कर दिया, तो महमूद जी उनके घर के सामने डेरा डाल के बैठ गए कि जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे वो वहां से नहीं हिलेंगे। सो किशोरदा ने ये फिल्म की एंड गेस व्हाट, किशोरदा इतने कमाल थे कि जब फिल्म के रशेस सुनील दत्त साहब जो कि फिल्म के मेन लीड थे उन्होंने देखे तो ही वॉज वेरी वॉरिड कि ये क्या हुआ है, ये तो किशोरदा के नाम की फिल्म हो जाएगी। तो उन्होंने और महमूद साहब ने किशोरदा के कुछ कुछ सीन्स एक्चुअली में चॉप भी किए एंड ये बात किशोरदा को पता थी एंड ही डिड नॉट माइंड क्योंकि उनका प्यार तो बस गाना था। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। आज और किस किस के किस्से लेकर के आई हूँ सब बताऊंगी एक एक करके, जल्दी से वापस आओ, ओनली ऑन मिर्ची

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

काका ना हमेशा से अपनी फिल्म में एक काना खुद पे ऐसा जरूर पिक्चराइज कराते थे जो कि किशोर दा ने उनके लिए प्लेबैक किया और पंचम दा ने उनके लिए कंपोज किया हो, जिसमें वो बस हरफन मौला की तरह जिंदगी को एंजॉय करते हुए आगे चले जा रहे हैं, जैसे कि ये गाना फ्रॉम द फिल्म मेरे जीवन साथी। अब इस फिल्म को बनाने में पता है क्या हो रहा था, क्योंकि काका यानी राजेश खन्ना जब किसी फिल्म में आ जाते थे तो भाई सुपरस्टार थे, और उनका जो पैसा होता था वो फिल्म के बजट को ऑलरेडी शूट कर देता था। ऐसे में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स क्या करते थे कि वो हीरोइंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते थे। तो ये जो फिल्म थी, दिस वॉज ऑफर्ड टू साधना जी, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, वो भी टॉप क्लास हीरोइंस, उनके पैसे जो थे वो कम ही नहीं हो रहे थे, दे आस्क फॉर अच्छा खासा पैसा। अब भाई प्रोड्यूसर थोड़ा परेशान हुए कि मैं दो दो स्टार्स को एक साथ कैसे फिट करूं, तो ऐसे में राजेश खन्ना ने उनको सजेस्ट किया तनुजा जी। एंड तनुजा जी जो उस समय एक्चुअली में ए ग्रेड फिल्मों को देखना चाह रही थी, उसमें काम करना चाह रही थी बड़े डायरेक्टर्स और बड़े एक्टर्स के साथ, शी सेड यस एंड दिस फिल्म मेरे जीवन साथी वॉज एक्चुअली अ हिट। पुरानी जींस पे इसी फिल्म का गाना मैंने आपको सुनाया था, अब कौन आ रहा है, आहा मैं बताऊंगी नहीं, सुना दूंगी।

ये गाना ऋषिकेश दा के एक टेली सीरीज आई थी जिसका नाम था तलाश. ओके, 90s में टेलीविजन सीरियल आया करता था और ये गाने की लाइन उसमें यूज हुई थी. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ हेमंत कुमार का ये गाना जो कि उन्होंने खामोशी फिल्म के लिए गाया है और ना कंपोज भी उन्होंने ही किया था. अब ऋषिकेश दा की एक टेली सीरीज जिसका नाम था तलाश, उसमें इस गाने की लाइन को यूज किया गया था. जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है. वेल, दिस इज फ्रॉम द फिल्म खामोशी जिसमें थे राजेश खन्ना और वहीदा रहमान. एक्चुअली में डायरेक्टर साहब तो लेना चाहते थे देव आनंद जी को, लेकिन वहीदा रहमान ने काका को सजेस्ट किया था और ये फिल्म अच्छी खासी पॉपुलर हुई थी. और भी क्या क्या किस्से उस जमाने के लेकर के आई हूँ, एक साथ थोड़ी ना बताऊंगी. गाने सुनकर के वापस आओ. दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेश खन्ना और मुमताज जी की हिट जोड़ी का एक और ये खास गाना फ्रॉम देयर फिल्म आपकी कसम। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब काका पर्दे के उस पार होते थे तो उनकी आवाज पीछे से कौन बनता था? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी किशोरदा। वेल, ये फिल्म की ना एक और खास बात है, यूके में एक नया नया इंडियन थिएटर खुला था, इंडियन सिनेमा खुला था, और उसका नाम था नटराज। वहां पे पिक्चराइज यानी वहां पे दिखाने वाली ये पहली इंडियन फिल्म थी आपकी कसम। इसी फिल्म का गाना मैं लेकर के आई थी। अगला कौन सा है? हाँ, चलो किशोरदा की बात हुई है, किशोरदा का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये पहली फिल्म थी जीतू जी और गुलजार साहब के एक साथ। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म परिचय। नाउ दिस वाज द फर्स्ट फिल्म इन द सीरीज ऑफ थ्री फिल्म्स जो कि गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी और जितेंद्र जी पे पिक्चराइज थी। द अदर टू फिल्म्स जो थी वो थी एक खुशबू और दूसरी थी किनारा। दोनों में इतनी अच्छी जमी कि दोनों ने तीन फिल्मों में एक साथ काम किया, यानी इन तीनों फिल्मों में गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया और जीतू जी ने उसमें काम किया। वैसे बाय द वे जो अदर टू फिल्म्स थी यानी खुशबू एंड किनारा, ये दोनों जीतू जी के ही बैनर के अंडर बनी थी और उसका नाम तब था तिरुपति पिक्चर्स। और इन तीनों में ऑफ कोर्स आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक एंड गुलजार साहब के लिरिक्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
2: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

बहुत ही खास बात है इस गाने में, क्योंकि बच्चन साहब के गाए हुए कलेक्शन का ये पहला गाना था। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ, दिस सॉन्ग इज संग बाय अमिताभ बच्चन जी, और ये उन्हीं की मूवी मिस्टर नटवरलाल का गाना है। लेकिन उन्होंने इतने सारे जो गाने गाए ना, ओ साथी रे, आज रपट जाए तो, नीला आसमास हो गया, मच गया अशोर, एंड सो मेनी ऑफ देम, अमर अकबर एंथनी, सो मेनी ऑफ देम, उनमें यानी इस टैलेंट में, उनके गाने के टैलेंट में ये गाना पहला गाना था, मेरे पास आओ। राजेश रोशन ने कंपोज किया था, एंड ही एक्चुअली वेंट एंड सजेस्टेड दिस टू बच्चन साहब कि इस गाने में मुझे आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। अगर शायद राजेश रोशन ना होते और बच्चन साहब को कन्विंस ना करते, तो हमें बच्चन साहब की आवाज़ इतने ढेर सारे गानों में मिलती ही नहीं। ऑलराइट, और कौन कौन सी बातें हैं उस जमाने के, एक एक करके बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये गाना तो पंचम दा ने इस फिल्म के लिए बनाया ही नहीं था। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना था, दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैंने पूछा चांद से, आरडी बर्मन साहब ने कंपोज किया, रफी साहब ने गाया। नाउ दिस फिल्म के लिए गाना बना ही नहीं था। अब्दुल्ला से बहुत पहले रफी साहब और पंचम दा ने ये गाना बना करके रखा था, लेकिन एक बार रफी साहब के घर पे संजय खान ने ये गाना सुना। गाना क्या, इस गाने की धुन सुनी एंड ही लव्ड इट इंस्टेंटली एंड ही सेड कि मैं जो फिल्म बना रहा हूँ अब्दुल्ला, उसमें इस गाने को मैं डेफिनेटली जगह देना चाहता हूँ। फिर ईयर्स लेटर, क्योंकि इस गाने को बने हुए ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़े बहुत मिनिमल चेंजेस के साथ रफ़ी साहब ने गाना गाया और ऑफकोर्स पंचम दा की कॉम्पोजिशन है और इसको अब्दुल्ला में रखा गया। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स दिस इज, मैंने पूछा चांद से। पुरानी जीन्स पे आप खुश रहे आगे साथ, और भी किस्से हैं एक एक करके सुनाती रहूँगी। कम राइट बैक।

लेट लेजेंडरी एक्टर मनोज कुमार जी के पास ना जनरली हर फिल्म डायरेक्टर जाता था अपनी फिल्म के रशेस दिखाने और उनसे सजेशन भी लेता था। पुरानी जीन्स पे आपो श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म कलाकार। इसमें थे कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी जी। अच्छा, जब मनोज कुमार जी को ये फिल्म के रशेस दिखाए गए ना प्री लॉन्च से भी पहले, तो मनोज कुमार जी ने इस फिल्म में कुछ चेंजेस बताए कि फिल्म के कैरेक्टर को सिंपथी नहीं मिलेगी अगर वो ऑडियंस को ऐसे दिखेगा, बिकॉज फिल्म में कुणाल गोस्वामी श्रीदेवी के साथ बहुत रफली बिहेव करता है एंड लेटर ऑन पता चलता है ओ ही वॉज डायग्नोज विथ कैंसर। तो मनोज कुमार जी ने ये कहा था कि ये बात पहले ही बता दो, इंटरवल से पहले बता दो, सो दैट ऑडियंस को ये रफ बिहेवियर समझ में आए और वो कैरेक्टर के साथ सिंपथाइज कर पाए। पर ऐसा डायरेक्टर साहब ने किया नहीं और उनका मानना था कि इसी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। ऐसे बड़े सारे किस्से ना मुझे पता करके आने में आपके लिए बहुत मज़ा आती है, सो दैट यहाँ मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं, उस ज़माने के गाने और बस उस ज़माने की बातें। सो कम राइट बैक।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

रफी साहब का ये गाना ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. मूवी का नाम है तुमसे अच्छा कौन है. और इस फिल्म की सबसे खास बात बताओ बताओ क्या. अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ. ललिता पवार का डबल रोल था इस फिल्म में. सोचो ना हीरोइन का ना हीरो का, पर ललिता पवार का डबल रोल. सच अ रेयर फिल्म है ना. हाँ जी, तो इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया हमारे किशोरदा. क्या सुनाने वाले हैं जरा गौर फरमाइए.

भाई शर्मिला जी को लेटर ऑन ये गलती लग रही हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि ओ हो, शी लुक्स सो हॉट, शी लुक्स सो सेंसुअस। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ, ये जो गाना है ये है फ्रॉम द फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, जिसमें शर्मिला टैगोर ने बिकिनी पहन के पूरे इंडिया को शॉक कर दिया था। लेटर ऑन इन अ चैट शो विद हर डॉटर इन लॉ यानी करीना कपूर खान, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की कि उन्होंने उस समय सोचा नहीं और बहुत वे अहेड, यू नो, चीज उन्होंने बहुत पहले कर ली। बट आई वुड से कि क्या हॉट और क्या सेंसुअस वो लगे, और उनसे ज्यादा खूबसूरत, उनसे ज्यादा हॉट कोई भी बिकनी में ना कभी लगा और ना कभी लगेगा। तो उनकी इसी फिल्म का गाना एन इवनिंग इन पेरिस का गाना था जो रफी साहब ने गाया। अगला कौन है? अगला है, नहीं बताऊंगी, नहीं सुना दूंगी।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

देव साहब ने मना किया, जितेंद्र जी ने मना किया, और तो और प्रकाश मेहरा ने भी मना कर दिया। किसी को ये नहीं पता था कि इस फिल्म के इतने सक्सेसफुल सीक्वल्स बनेंगे और आज तक बनते रहेंगे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म द ओरिजिनल डॉन, जिसको लिखने वाले थे सलीम जावेद साहब की जोड़ी। एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड दे वर नॉट एबल टू सेल द स्क्रिप्ट टू एनीवन। जब वो ये स्क्रिप्ट लेकर के गए ना, तो उनको भाई जीतू जी ने मना कर दिया, प्रकाश मेहरा ने मना कर दिया, देव आनंद साहब ने मना कर दिया कि इस स्क्रिप्ट में क्या है, इट इज ऑल अबाउट वन कैरेक्टर जिसका नाम है डॉन। इट वॉज अल्टीमेटली डायरेक्टर चंद्र बैरट एंड प्रोड्यूसर नरिमन ईरानी जिन्होंने स्क्रिप्ट को यू नो परचेज किया उनसे, खरीदा उनसे। और फिर तो डॉन के बारे में क्या ही कहना, डॉन वन, डॉन टू, डॉन थ्री, डॉन फोर, और मुझे लगता है न जाने कितनी डॉन्स बनती रहेंगी। लेकिन द ओरिजिनल इज ऑलवेज द ओरिजिनल, बच्चन साहब एज डॉन ऑलवेज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जिन्हें एक ही बंदे पे बार बार प्यार आता है। उनके सामने कितनी भी हसीनाएं आ जाएं या फिर कितने भी हैंडसम मुंडे आ जाएं, उन्हें तो प्यार बस इसी एक बंदे पे बार बार आता है। अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास जी की आवाज में कौन सा गाना है आप गौर फरमाइए। तब तक मैं जाती हूँ, ख्याल रखो अपना। इन केस यू वांट टू स्पीक विद मी तो वन टू वन चैट हो जाएगी ना हमारी फेसबुक या इंस्टा पे, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव। बस DM कर देना। गुड नाइट।

0: ऑडियो और गो।
1: यार देखो, हिट होना अलग बात है और हिस्ट्री क्रिएट करना अलग।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची बेटी उन दिन हुआ बाबू मोशाय। और अगर नेशनल अवार्ड्स का नाम आता है तो ये सुनते ही बात समझ में आ जाती है कि यार यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, परफॉर्मेंस का कलेक्शन काउंट होता है। और इस साल के 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सबसे बड़ी जीत रही आर्टिकल 370 की, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। एंड इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने अपना पहला नेशनल अवार्ड भी जीता है एज द बेस्ट एक्ट्रेस। नॉट जस्ट दैट, इस फिल्म के लिए ही म्यूजिक प्रोड्यूसर शाश्वत सचदेव को भी बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड दिया गया है। मूविंग ऑन, बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी इस बार शेयर हुई है। सबसे पहले तो मलयालम सिनेमा के पावर हाउस ममूती को ब्रह्मायुगम के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड मिला। एंड दिस अवार्ड इज अ प्रूफ कि भले ही आपकी फिल्में आपका काम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे ना करे, अगर उनको इस अवार्ड कैटेगरी में डाला गया तो आपने कोई ना कोई तीर तो जरूर मारी है। इनफैक्ट इट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 72 इयर्स, जब नेशनल फिल्म अवार्ड्स का एक ट्रेडिशन टूट रहा है। हर बार ये फिल्म अवार्ड्स जो हैं वो दिल्ली में हुआ करती थी, बट दिस टाइम द अवार्ड सेरेमनी इज शिफ्टिंग टू गुजरात्स एकता नगर। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर इज माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: सुनिए शिफ्टिंग टू गुजरात एकता नगर।
1: मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर्स माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: ना किसी के दिल से ना जज्बातों से, भाई मैं तो अपना फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ और इस गेम की शुरुआत होती है। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है दिल्ली से रजत कौशिक जी। तैयार है सर?
3: यस फॉर श्योर मैम।
0: ऑल राइट, आई लाइक इट। करीना कपूर की फिल्म जिसमें उनको भाग के शादी करने का क्रेज था।
3: अच्छा, जब वी मेट।
0: जब वी मेट में आदित्य कौन है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर किस फिल्म में एंगर इश्यूज वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन बने हैं?
3: कबीर सिंह।
0: क्या बात। कबीर सिंह में प्रीति कौन है?
3: कियारा आडवाणी।
0: बहुत बढ़िया। कियारा आडवाणी की फिल्म जिसमें सरोगेसी और स्पर्म मिक्सअप हो जाता है?
3: एक मिनट, गुड न्यूज। गुड न्यूज।
0: गुड न्यूज में कियारा के हस्बैंड कौन है?
3: अक्षय कुमार। दिलजीत दोसांझ। अच्छा, करीना के हस्बैंड है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया। दिलजीत दोसांझ की फिल्म जो एक पंजाबी सिंगर की बायोपिक थी।
3: मैनू विदा करो।
0: हाँ हाँ,
3: मूवी थी वो, अमर सिंह चमकीला।
0: बहुत बढ़िया। अमर सिंह चमकीला में उनकी वाइफ कौन है?
3: परिणीति चोपड़ा।
0: परिणीति चोपड़ा की फिल्म जिसमें उनको झंझनाहट, सरसराहट, फरफराहट जैसे सेंसेशंस होते हैं?
3: हंसी तो फंसी
0: में मेल लीड कौन है?
3: सिद्धार्थ कपूर। सिद्धार्थ मल्होत्रा।
0: सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म जिसमें वो कॉलेज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते हैं?
3: स्टूडेंट ऑफ द ईयर।
0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ से किसको प्यार होता है?
3: आलिया।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो किडनैप हो जाती है?
3: हाईवे।
0: हाईवे में किडनैपर कौन है?
3: रणदीप हुडा।
0: रणदीप हुडा की पहली बायोपिक कौन सी थी?
3: सरबजीत मैम।
0: सरबजीत में रणदीप की बहन कौन बनी है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें उन्होंने सिलसिला ये चाहत का ना बुझने दिया?
3: देवदास।
0: क्या बात। देवदास में पारो के प्यार में शराबी कौन बन जाता है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनको जंगली बिल्लियां पसंद है?
3: डॉन टू।
0: डॉन टू में अपने भाई के मौत का बदला कौन लेती है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा किस फिल्म में देसी गर्ल बनी है?
3: दोस्ताना।
0: दोस्ताना में किस हीरो ने येलो चड्डी में अपने सिक्स पैक एब्स प्लॉन्ट किए हैं?
3: जॉन अब्राहम।
0: और जॉन अब्राहम की फिल्म जिसमें वो बाइक पे चोरी करते हैं?
3: धूम धूम।
0: आपने भी मचा दी है धूम धूम।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू। यार परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया,
0: बट ऑनेस्टली वो प्रेशर आपके गेम में नजर नहीं आया। इसी के साथ आपको डिक्लेयर करना चाहूंगी
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: यार डुएट्स का मतलब हमेशा रोमांटिक गाने तो नहीं होते ना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और आज अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भाई अच्छा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डुएट्स कौन से पसंद है तुझे, तो लोग रोमांटिक नंबर्स की बात करेंगे जहाँ हीरो हीरोइन बारिश एक अम्ब्रेला और बैकग्राउंड में वायलेंस बज रही हो। बट आज ना मैं अपने पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू उन गानों की बात करूंगी जहाँ रोमांस से ज्यादा दोस्ती मस्ती कॉम्पिटिशन और ब्रोमांस है, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मेल डुओज ने हमें कुछ ऐसे सॉन्ग्स दिए हैं जो सुनते ही मूड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। कभी सलमान गोविंदा की मस्ती, कभी अक्षय सैफ का अनाड़ीपन, और कभी अमिताभ बच्चन गोविंदा का लार्जर देन लाइफ स्वैग। तो लिस्ट की शुरुआत करना चाहूंगी विद द सॉन्ग डू यू वांट अ पार्टनर फ्रॉम द फिल्म पार्टनर। नंबर दो से विल डिस्कस अबाउट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना वेले। नंबर तीन पे फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल ट्रैक। नंबर चार पे फिल्म देसी बॉयज का टाइटल ट्रैक। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नंबर पांच पे फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टाइटल ट्रैक। सो लेट्स बिगिन 2007 में आई फिल्म पार्टनर के इस गाने से।
3: Do you wanna partner? Oh, partner. Do you wanna partner? Love me, say. Wanna partner? Oh, partner. Do you wanna partner?
0: सलमान खान और गोविंदा की कॉमेडी केमिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और इसी एनर्जी को कैप्चर करता है ये पर्टिकुलर गाना, जहां साजिद वाजिद का सुपर पेपी कॉम्पोजिशन है, उदित नारायण और वाजिद की इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल वॉइसेस हैं, और ऊपर से शान और क्लिंटन सिरेजो जैसे वॉइसेस का कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड यू नो इस गाने की सबसे खास बात क्या है, ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं लगता, एक बॉयज नाइट आउट का साउंड ट्रैक लगता है। एंड ऑनेस्टली अगर इसका हुक सुनते ही आपके पैर थिरकने लगते हैं तो ये आपकी गलती नहीं, दिस इज नॉस्टैल्जिया हिटिंग यू ब्रो। वैसे इस गाने को लेकर आपकी कोई मेमोरी रही है देन डू शेयर दैट विद मी। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी के चार गानों के डिस्कशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.